0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी हो या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे
3: 6478886000।
2: बाबा जी आकड़ा मंत्र है
3: बच्चा, ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी,
3: बाबे दा घर भी एना ने बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते ले परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 6478886000 और विजिट NRIMB.com।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस समग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
8: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
9: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
10: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें।
9: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
10: हां नाले मैं सारी दियां बाहां वी तां बिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू वी।
11: कैलेडन सब्जी फार्म, जिथों तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां, हरियां मिर्चा, घिया, मटर, कद्दू, लौकी, शलगम, टमाटर, शिमला मिर्च।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस समग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
8: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
9: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
10: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें।
9: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
10: हां नाले मैं सारी दियां बाहां वी तां बिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू वी ले दांगे।
9: तो मेरे जीजे ली घड़ी,
10: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
9: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर, 7198 एयरपोर्ट रोड, मालचंद, इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714290।
12: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगास, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना होवे ते आज ही आओ। सूट्स ते ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकदे हो। नवरात्रि स्पेशल घाघरा चोली जस्ट $50, मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज, 6101 Mayfield Road, Unit 3, Brampton. Call 905-794-4005.
11: कैलेडन सब्जी फार्म, जिथों तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां, हरियां मिर्चा, घिया, मटर, कद्दू, लौकी, शलगम, टमाटर, शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा, सरों दा साग, गंदलां वाला बनाया बनाया लैणा विद मक्की दी रोटी, जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो। इस तों इलावा स्टील, सरवलो, पित्तल, तांबा, मिट्टी, हर साइज दे बर्तन, फोल्डिंग बैड, नवारी पलंग, मूड़े, साइकिल, तंदूर आदि खरीदण वास्ते पहुंचो 1250 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन, एयरपोर्ट एंड मेफील्ड, और कॉल 905-840-9000। ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म।

0: नवंबर 5 से 8 तक बनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
2: एक्सेस रैंप्स, एक्सकवेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कांटेक्ट करो जस बालू, इट्स 416-818-8900
1: और विजिट www.calidonpaving.com।
3: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM Springdale Dental Center दे नाल।
4: Wide range of services, wisdom tooth, root canal, denture.
5: For dental extraction, cleaning, gum treatment and implant.
3: SM Springdale Dental Center, 2260 Bovade Drive East, Brampton. Bovade Jingusi Dental Center, 811 Bovade Drive, Unit 17, Brampton. Call 905-789-8266.
6: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
7: सस्ता

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगास, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना हो तो आज ही आओ। सूट्स ते ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हो। नवरात्रि स्पेशल कागरा चोली जस्ट $50। मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज 6101 मेफील्ड रोड यूनिट 3 ग्राम। Call 905-794-4005।
2: यह टाटा आटो इलेक्ट्रिक का इथे हर तरह दी कार वैन ट्रक अते एक्सयूवी दे स्टार्टर अल्टरनेटर अते जनरेटर तुसी रीबिल्ड करवा सकदे हो। टाटा आटो इलेक्ट्रिक का स्टार्टर अल्टरनेटर जनरेटर रीबिल्ड करन दा चैंपियन। मिलो घर शंकर वाले वीर सरदार सतनाम सिंह अते अमरीक सिंह 38 एडिस्टोन एवेन्यू इन नॉर्थ यॉर्क। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-740-5555 416-740-5555। टाटा आटो इलेक्ट्रिक।
3: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM सुप्रीम डेल डेंटल सेंटर दे नाल।
4: वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, विजडम टूथ, रूट कनाल, डेंचर
5: फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, गम ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट।
3: SM सुप्रीम डेल डेंटल सेंटर 2260 बोवेट ड्राइव ईस्ट, ब्रैम्पटन। बोवेट जिंगोसी डेंटल सेंटर 811 बोवेट ड्राइव, यूनिट 17, ब्रैम्पटन। कॉल 9057898266।
6: The 2026 Brampton municipal election is on Monday, October 26. If you can't vote on voting day, you can vote early during advance polling. Advance polling will take place on October 9, 10, 11, 18 and 17. Voting hours are weekdays from noon to 8 p.m. and weekdays from 10 a.m. to 5 p.m. You can vote at any advance voting location in Brampton. Bring your voter notice if you received one and identification showing your name and address. To vote. Didn't receive a voter notice? Bring your ID with you to vote and you can update or add your voter information in person. For voting locations, voter information and a list of candidates, visit brampton.ca/brampton votes. A message from the city of Brampton.
2: ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸੀ 647-547-8188 6475478188 Lotus Funeral Home।
7: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड लै जी, ट्रक फिर खड़ गया यार।
8: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
7: सच्ची?
8: ओ मुच्ची,
7: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
8: इना कोड़ा सालना दा तजुर्बा।
7: हुन एड्रेस भी लिखा।
8: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबी कोक, यूनिट 5।
7: कॉल 647-706-9257 647-706-9257।

विश्वास प्रतीक ना रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवा वादा काम हो गया जे सौखा मारो एक आवाज अजे हे कमा वास्ते रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटर्नीज बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 9052328700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले आज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 905-928-8557 अनाज मार्ट।
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance,
5: we also ship cars,
3: tailor transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
4: 416-524-6704 pe.
3: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist.
3: HK Movers.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरों एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है।
3: ओ यार काव्य, होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
4: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
5: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन।
6: रेट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1115
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers,
1: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist,
1: HK Movers.
4: HK Movers.
5: ਟਾਟਾ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵੈਨ ਟਰੱਕ

0: से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
1: लव साउथ
2: पंजाबी दिल अंग्रेजी वाइब CJMR इज बैक अलाइव CJMR 1320 आ गया हुए छा गया हुए।
3: CJMR 1320 एम फ्रीक्वेंसी रेडियो प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम रंगला पंजाब में आपकी होस्ट एंड दोस्त अंजू सिक्का पेशे खिदमत है आपकी नजर में। आज के मुख्य समाचार आप सबकी खिदमत में। नो बिग नोहा और मो जो कि सस्केचवान के प्रीमियर, उन्होंने एलान मस्क की उस पोस्ट का कि सस्केचवान को भी कनाडा से अलग हो जाना चाहिए का रिमार्क के ऊपर सिर्फ एक शब्द में कहा नो। सस्केचवान प्रीमियर स्कॉट मो ने पब्लिकली डिसमिस कर दिया उस सजेशन को जो कि आइए वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन प्रोविंस को सेपरेट होना चाहिए। मो का रिप्लाई स्टेम था और इसके साथ ही साथ एलन मस्क ने इनकरेज किया है क्यूबेक, अल्बर्टा और सस्केचवान को कि वो कनाडा से अलग हो जाएं। मस्क जो कि ट्रिलियनर है, ओनर है स्पेस एक्स के, टेस्ला के और X.com के, उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है क्यूबेक का प्रीमियर इलेक्ट पॉल सेंट पियर प्लामेडॉन को जो कि कहते हैं कि ड्रीम है क्यूबेक की इंडिपेंडेंस का और उनका कहना है कि बहुत ही जल्द ये दिन आएगा। मिचिगन रिपब्लिकन माइक रॉजर्स, आफ्टर ऑल जी हां कोई तो है अमेरिका में जिसने ट्रंप ओवर कनाडा के टैरिफ्स को लेकर आवाज उठाई है। मिचिगन सीनेट कैंडिडेट माइक रॉजर्स ने कहा कि अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड वॉर कनाडा के साथ चल रही है एज अ रिपब्लिकन बहुत ही टाइट रेस है और उनका स्टेट सबसे ज्यादा हिट हुआ है टैरिफ की वॉर से। कैंपेन एड पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर बुधवार को। रॉजर्स ने लोगों को कहा मिचिगन कि कनाडा हमारा दुश्मन नहीं है, हमें सबको खत्म करना होगा, टैरिफ वॉर को खत्म होना होगा और हमें कनाडा के साथ एक उपयुक्त रिलेशनशिप विद द ट्रेड बनाने पड़ेंगे। लॉ जो है वो लगा है लॉ सूट जिसमें कि नेग्लिजेंस हुई है, डेथ हुई एक औरत की जिसकी उम्र 23 साल की थी, डेंटल ट्रीटमेंट में डेंटल विजिट के लिए गई थी इन मॉडर्न मैनिटोबा। जी हां, जुलनी स्वर्ड बॉयल्स है, उनके फादर वर्जीनिया मे बॉयल्स, उनका कहना है कि उनकी बेटी गई थी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जहां पे उसका विजडम टूथ निकालना था, एक्सट्रैक्ट करना था और उसके लिए उसको जनरल एनेस्थीशिया दिया गया। मालूम पड़ता है कि इसी ट्रीटमेंट के दौरान कुछ ज्यादा हुई की जो मात्रा थी उसकी ज्यादा हुई और टॉक्सिकिटी वजह से उसकी मौत वहीं पर ही हो गई। पुलिस जब उसको अस्पताल लेके गई तो उसको वहां पर मृत घोषित करार कर दिया गया, सू किया गया है इस डेंटिस्ट को। बैटरीज की आग लगने से काफी ज्यादा आग लग रही है इसलिए इस खतरनाक कारण को खत्म करने के लिए फायर सर्विसेज ने इस स्टेप को बहुत सीरियसली लेते हुए मैसेज लिखा है बिग स्क्रीन्स के ऊपर जहां पे दिखाई हुई जलती हुई बैटरी के, हमें काफी ज्यादा सचेत रहना चाहिए अपने घर की लिथियम बैटरीज को लेकर। एक अज्ञात वायरस है जो कि आयोवा से शुरू है, पेशेंट जो है इसमें बीमार हो रहे हैं, हफ्तों ही बीमार रह रहे हैं और उनका कहना है कि बीमारी जब उनका वायरस खत्म होने के बाद एक दो दिन के बाद फिर से वापस उभर कर आ जाता है। कोविड टेस्ट करें या कोई और टेस्ट करें उसका तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, हालांकि कौन सा वायरस है इसका भी पता नहीं चल पाया। एक वाहिद व्यक्ति जो कि सरवाइव हुआ यूएस लीथल इंजेक्शन से, और जैसे कि हम काफी दिन से इस क्रिस्टा पाइक की स्टोरी को कवर कर रहे हैं, अब वो कन्फ्यूज है, उठ चुकी है, बार बार यही पूछ रही कि मैं कहां पे हूं। उनके लॉयर का कहना है कि उन्होंने काफी ज्यादा सफरिंग कर ली है, अब उनकी सफरिंग को खत्म करना चाहिए, यानी कि उनकी जो एक जो उनके ऊपर जो सजा है उसको खत्म करना चाहिए। गोल्डन नेकेड ट्रंप की स्टैचू यूरोपियन पार्लियामेंट में इंस्टॉल की गई, किंग ऑफ इनजस्टिस उसको कहा गया है। और ट्रंप लाइक्स गोल्ड डैनिश आर्टिस्ट है जिन्होंने ये मूर्ति बहुत बड़ी सी क्रिएट की है, उन्होंने कहा है कि ये स्कल्पचर जो है पसंद आएगा ट्रंप साहब को क्योंकि ये गोल्डन है एंड ट्रंप लाइक्स गोल्ड। लिबरल्स ने, फेडरल लिबरल्स ने एक्सटेंड कर दिए मेड एक्सक्लूजन उन लोगों के लिए जो कि मेंटल किसी इलनेस से सफर कर रहे हैं, यानी मेड मतलब है MAID कि डाइंग विथ असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग, तो उनका जो लोग मेडिकली बीमार है उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। कैलिफोर्निया के एक कपल को दूसरे अरेस्ट किया गया है, बहुत ही हॉरिफाइंग और खतरनाक स्टोरी सामने आई। एक चाइनीज कपल है वहां पर जो कि सरोगेसी के थ्रू यानी कि किसी की कोख में अपने बच्चे को पैदा करवाते हैं, कहते हैं कि हम अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। इस तहत उन्होंने कम से कम 23 बच्चे पैदा किए हैं और साथ ही उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, बुरी तरह से रखा जाता है। और एक 66 वर्षीय व्यक्ति है और उनकी वाइफ 39 ईयर्स की जो कि रहती है लॉस एंजलिस से 23 किलोमीटर करीब दूर, اور ان کے اوپر اچھا خاصا کیس بھی اس وقت چل رہا ہے. فلو سیزن کی بات کریں تو ریسپیریٹوری ایلنس، یہ بیماری جو کہ سانس لینے سے کنیکٹڈ ہے، گریٹر ٹورنٹو کے ایریا میں اس سال وقت سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہے. آپ چاہے دیکھیں گے آپ کے سامنے آپ کے سہ پاٹی لوگ کافی زیادہ فلو سے ہیں گرسط، جس میں کہ H1N1 یہ فیور کافی چل رہا ہے، اس سے آپ کو سچیت رہنا چاہیے. یہ تھا خبروں کا خاص بلٹن آپ سب کی خدمت میں. دیکھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں آپ ریڈیو پروگرام ٹی وی پروگرام رنگلا پنجاب میں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست انجو سکا.
1: ریئل نیوز، ریئل امپیکٹ، شوئنگ یو ریئل ورلڈ. CJMR 1320 CJMR 1320 دا وائس آف دا سٹی.
4: مرنا انسان دے ہتھ نہیں، پرنتو اس سنسار تو تر گئے پرانی دا اس دیاں دھارمک رو ریتاں دے نال اس نو ودا کرنا ساڈے وس ہے. اپنی سنسکرتی اپنی دھارمک رو ریتاں مطابق انتم رسماں ویلے یاد رکھو. ریکس ڈیل دے وچ لوٹس فیونرل ہوم، جتھے انتم درشنا تو لے کے دس سنسکار دیاں رسماں اکو ہی چھت تھلے ہندیاں ہن. لوٹس فیونرل ہوم دا سارا سٹاف تہاڈی بھاشا پنجابی ہندی وی بولدا ہے. ودھیرے جانکاری لئی کال کرو سردار ہرمندر سنگھ ہنسی 647-547-8188
5: پریشان ہو ڈائبٹیز بلڈ پریشر کولیسٹرول تھائیروئڈ لی لگاتار دوائیاں لیندے لیندے تھک گئے ہو؟ جی ہاں، تاں تہاڈے لی ایک خوشخبری، جینیٹک ٹیسٹنگ دے ماہر ڈاکٹر نشا ڈوگرا اتے انہاں دی ٹیم برامپٹن وچ تھوڑے لی آرگنائز کرن جا رہے نے ایک فری ہیلتھ سیمینار. اس سیمینار وچ ڈاکٹر نشا ڈوگرا تہانوں اہم صحت سمسیاواں تے پاسبل روٹ کازز بارے ڈائٹ لائف سٹائل صحت مند بدلاو تھوڑے اوورال ہیلتھ نو کیویں سپورٹ کر سکتے نے. اکتوبر 25 دوپہر 2 بجے تو 4 بجے تک گرین بہار ریکریشن سینٹر برامپٹن وکھے سیٹس لمیٹڈ نے، اس لیے اج ہی رجسٹریشن کرو. کال کرو 604-593-5030 ڈاکٹر نشا ڈوگرا دا فری ہیلتھ سیمینار، صحت مند لائف سٹائل وال ایک چنگا قدم.

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं सुखमन सिंह तुहाड़ा वार्ड 9 एंड 10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं एक वकील हाँ, मैं कैनेडा की सब तो वड्डी लॉ फर्म विच काम करता हाँ। ब्रैम्पटन दे निवासी वधे हुए प्रॉपर्टी टैक्स अते क्राइम तो बहुत दुखी हैं। सानु रीजनल काउंसलर चाहिए जो इन्हों मुद्दों की आवाज उठावे। अक्टूबर 10, 11, 16, 17 की एडवांस वोटा ते मेनू वोट पाके कामयाब करो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट sukhmansingh.com। ऑथराइज बाय द सुखमन सिंह कैंपेन।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045 9057990045 Top Choice Electronics।